सिदक सबर की लड़ाई जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नूं वरगला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लियांदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, इथों तक आखिया कि तुहानूं पीर बना दिता जाएगा। कचहरी लगी हुई है, इस कचहरी दे विच वेखो कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर। बाणी विच महाराज कहते हैं, कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ए। बड़ी कोशिश की इन बच्चियां नू ईन मनावण दे वास्ते इन चंद लाइना दे विच इस प्रकार बयान किया है।

हमेशा मखमल दे गद्यां विच सौन वाले मक्खन मलाइयां नाल पाले होए उम्रां भी बड़ियां छोटियां छोटियां पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी बड़ा लालच दिता डराबे दिते एथों तक भी किया कि सूबे ने आख्या ऐ बचे हो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद हो गया है जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने तुसी हुण साड़ी कैद विच हो जे तुहानू छड़ दिता जाए तां तुसी की करोगे आ वेखो जरा अमृत की शक्ति उम्र का तकाजा नहीं अमृत की शक्ति गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने आखन लगे कि सानू पहला तो यह उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा सूबे नू क्या पहला तो सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे होर सिंघा नू तैयार करांगे अमृत छका करके फौज तैयार करांगे ते ओ फौज जब तैयार बर तैयार होवेगी फिर जुलम दे काकरे ते आके मैदाने जंग विच डटांगे भावे पोरियां पोरियां कट के शहादत क्यों ना प्राप्त करनिया पैन अखीरले दम तक जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे ऐथे एक गल होर वर्णन योग है जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि एक गल सुनी ता मलेरकोटले दा नवाब अश अश कर उठ्या धन गुरु गोबिंद सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह लेकिन कोल ही खड़िया सी सुचानंद दीवान कहन लगा ए नवाब साहब सप दे बच्चे हमेशा सप ही हुंदे हन इन्हां दा मुंह बाहर कढ़न तो पहला पहला ही सिर फेर दिता जाना चाहिदा है इन्हां नूं खत्म कर देना चाहिदा है ते फतवा भी की लाया नीहां दे विचण दिओ जिंदा ही नीहां दे विचणवा दिता पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तन उन्हां दी सिखी तन बख्शिश अमृत दी दात छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने जिंदा ही नीहां दे विच अपने आप नूं चिणवाना मंजूर कर लिया पर सिदक निहारिया सिदक तो नहीं डोले कवि कहिंदा है

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह।

0: बिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
4: Looking ahead to the weekend, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, Miss Saigon is at the Alhambra Theatre, with performances running until Saturday 9th May. Also in Bradford, Jim Moyer Neo Fauna continues at Cartwright Hall, running through to the 31st August. Over in Calderdale, Frankie's Guy's 10th anniversary tour comes to the Victoria Theatre in Halifax on Friday 8th May. Also in Halifax, Fur and Feathers continues at Dean Clough, running until 27th May. In Leeds, I, Daniel Blake continues at Leeds Playhouse until Saturday 9th May. In Manchester, Bank of Dave the Musical is at the Lowry in Salford, running until Saturday 16th May. Over in East Lancashire, Ian McNab is live at Darwen Library Theatre on Friday 8th May. And finally in Milton Keynes, Sing Alonger, The Greatest Showman is at Milton Keynes Theatre on Saturday 9th May. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230-30, दास ब्रैडफोर्ड 7230-30।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश है बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-30 दास ब्रेडफोर्ड 7230-30।
3: Sunrise and music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: तुझ पे।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो आप हमें ब्रेडफोर्ड, कीतली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन, मिल्टन कीन्स और बहुत जल्द आप हमें डाबी में भी सुन पाएंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम लेकर आपकी मैं हाजिर हुआ हूं और उम्मीद रखता हूं आमिर शहजाद की तरफ से आप सब खैरियत के साथ होंगे। और आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। और अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों, प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। 2 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा और मिले जुले गीत होंगे, आपकी डेडिकेशन होगी। तो चलते हैं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

जी दोस्तों अभी आपने वेस्ट डायरी सुनी और आगे अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब एक प्यारे से गीत की जानिब चलेंगे। हमें फोन किया जनाब वाजिद भाई हडर्सफील्ड से, आपने शुक्रिया फोन करने का। नसरीन साहब आपने फोन किया शुक्रिया, आप आसमां के लिए गीत सुनना चाहती हैं आपके नाम करते हैं। अब्दुल क्यूम साफ राइजिंग हॉल से आपने फोन किया शुक्रिया जनाब आप फोन करने का और प्रोग्राम में शमूलियत का। आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम गीत होगा। और उसके बाद चौधरी मुजफ्फर साहब आपने भी फोन किया शुक्रिया जनाब फोन करने का और आपके तमाम दोस्तों के नाम करूंगा। बाद में जब कोई गीत लगाऊंगा तो लिस्ट जो आपने दी हुई है उस पे जो नाम है वो ज़रूर जनाब मेंशन किए जाएंगे। तो जनाब हीरा खान साहब आपने भी फ़ोन किया शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करते हैं। और तारिक जुल्फी साहब बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, आपके नाम गीत करेंगे क्योंकि आपके साथ इस वक्त जिगर के टोटे जिगरी यार जनाब आपके मलक इसाक साहब साथ में हैं और ड्राइव कर रहे हैं जनाब और साथ में सन रेडियो को सुन रहे हैं, आपके नाम भी करते हैं जनाब। ये प्यारा सा गीत उम्मीद रखूंगा आप दोनों भाई इसको ज़रूर पसंद करेंगे। शुक्रिया तारिक जुल्फी साहब फ़ोन करने का। और अभी किसी ने हमें मिस कॉल दी, आखिर में तीन डिजिट है जो 509, तो आपका नाम नहीं जनाब रजिस्टर्ड, तो आप दोबारा फ़ोन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं, ताकि आपका नाम यहाँ रजिस्टर्ड कर दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब हमें मिस कॉल दें तो आपको हमको पता चल जाए कि किसने फ़ोन किया है जनाब। तो आप हमें दोबारा फ़ोन कीजिएगा और अपना प्यारा सा नाम बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और साइमा जी ये गीत आपके नाम भी करते हैं, तो चलते हैं सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और उदर नारायण की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। और दोस्तों, इस वक्त जो टाइम है वो कमर्शियल का हो चुका है, तो चलेंगे पहले टाइम चेक कर लेंगे।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:45, यानी कि 11:45, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है। जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने फिर फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चौधरी मुजफ्फर साहब, आप जनाब सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के लिए, और आपके दोस्त जो हैं उनमें काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन सभी बड़ी प्यारी शख्सियात हैं जनाब, आप उनको उनके लिए गीत लगवाते हैं हमेशा, तो अच्छा लगता है। तो आप के दोस्तों की लिस्ट ज़रूर पढ़ूंगा या अभी पढ़ देता हूं जनाब। आप के दोस्तों में चौधरी आसिफ रियासत साहब, उनके नाम चौधरी फरियाद साहब, और महबूब इलाही साहब, तारिक जुल्फी साहब, जावेद मीर साहब, तारिक भट्ट साहब, शकील भाई भरने वाले उनके नाम, हीरा साहब के नाम, और चौधरी मोहम्मद उस्मान के नाम, सफीउल्ला नाम, सफीउल्ला भाई के नाम, वाजिद भाई अडसवीड वाले हैं उनके नाम, अजीब चौहान साहब के नाम, और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले जो हैं उनके नाम भी, शरफुद्दीन भी, और पापा शफीक, ख्वाजा शफीक साहब भी, और सलीम साहब भी, अतीका और जंगीर भाई ड्यूसबरी वाले हैं उनके नाम भी आप सुनना चाहते हैं। और इसी गीत को सोनिया जी बर्मिंघम में आप सुन रही हैं, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपके लिए। थोड़ी देर के बाद कोई ज़रूर गीत लगाऊंगा। उसके बाद नदीम मंसूर साहब, बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके, और आपने दो गीतों की फरमाइश की जनाब प्रॉनम की, और वो दोनों हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन एक उदर नारायण के गाने की आपने फरमाइश की, वो यहाँ है, वो लगा दूंगा थोड़ी देर के बाद। फिलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा। शुक्रिया नदीम मंसूर साहब फ़ोन करने का। उसके बाद सिमरन, आपने फ़ोन किया, सीमा जी आपके साथ हैं, और आप भी कोई गीत सुनना चाहती हैं, आने वाला गीत थोड़ा सोच भरा गीत है, आपके नाम भी कर देंगे। और उसके बाद हीरा खान साहब, तारिक जुल्फी साहब, मलक इसहाक साहब, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले, और दीगर दोस्त जो सुन रहे हैं सबके नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
4: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

गीत था, क्या गीत था। और इस गीत को जिन दोस्तों के लिए पेश किया था वो आपने सब ने पसंद किया होगा। और जनाब हीरा खान साहब, आपसे भी गप हुई, और सोनिया बहन आपने भी दोबारा फ़ोन किया और आपने कल वाले गीत की फरमाइश की। तो मैं थोड़ी देर के बाद, यानी कि जब 12 बजे आऊँगा, हिट ऑफ द आवर की शक्ल में वो आपकी पसंद का गीत ज़रूर प्ले करूँगा। पर कोशिश कीजिएगा जो मैं प्रोग्राम में आज शामिल किए हैं, कल उनकी फरमाइश ना किया करें, क्योंकि फिर वो बाद बंदे सोचते हैं यार बार बार वही गाने सुनने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से ना। तो अब मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ नदीम मंसूर साहब ने भी गाने की फरमाइश की है, तो वो गाना ही मुझे नहीं मिल रहा। तो अब क्या करें, किधर जाएं मैं, और गाना ढूंढते ढूंढते और कोई गाना ढूंढा नहीं, और वही ढूंढता रहा कि वो गाना वही प्ले करूँगा जो इन्होंने कहा मुझे। तो चलिए क्या हो सकता है, अब यही गाना लगा देते हैं, आप सभी के नाम कर देते हैं। तो खाना पूरी करने लगा हूँ जनाब, क्यों टाइम काफ़ी हो गया है, गाना कोई मिल नहीं रहा, तो वो ढूंढ रहा था जो नदीम मंसूर साहब ने कहा, तो इसलिए वो मिला नहीं। तो जल्दी मैं ये आपके लिए प्ले कर देता हूँ।

0: अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप दोस्तों ने प्रोग्राम का पहला हिस्सा पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में जनाब आप दोस्तों के लिए अच्छे म्यारी गीत पेश किए जाएं। और अब क्योंकि हमें जो ऊपर तले दो गीत हम लगाएंगे, अब तो हिट ऑफ द आवर की शक्ल में जो गीत लगाएंगे वो भी सोनिया बहन बर्मिंघम में इस वक्त सुन रही हैं, वो जो हैं वो इस गीत को सुनना चाहती हैं तो उनके नाम करेंगे। उसके बाद दूसरा गीत जो होगा वो नदीम मंसूर साहब की पसंद पे होगा, उनका फेवरेट गीत है, उन्होंने फरमाइश की है तो वो लगाएंगे। तो अब दोस्तों चलते हैं जनाब अपने गीत की जानिब और ये गीत नल करना चाहेंगे। सोनिया आप सुनना चाहती हैं स्पेशली इस गीत को, आपके नाम और हीरा खान चौधरी मुजफ्फर साहब नदीम मंसूर साहब सिमरन जी सीमा जी और ताजुल्फी साहब और वाजिद भाई नसरीन साहबा अब्दुल कीम साहब राइजिंग ऑल वाले ताजुल्फी साहब और जनाब इस वक्त मलिक इम्तियाज़ साहब काम कर रहे हैं, कमाज हैं मुनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह दिता उमेर बाबर इफराज उनके नाम भी करेंगे। और इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं, नजमा इफ़त नाजिया हमीदा रुबीना बुशरा स्पेशली इकरा जो है आप सुनना चाहती हैं तो इन सहेलियों के लिए ताजीम के लिए जायदा के लिए साइमा के लिए और दीगर सहेलियों के लिए आपके नाम भी करेंगे। और इकरा आपकी जन्म से बाद में ज़रूर गीत जो है प्ले करेंगे, आपकी जन्म से आपकी फ्रेंड्स जो आपके साथ काम कर रही हैं उनके नाम भी करेंगे। तो आप सभी बड़ी मेहनत लगन से काम कर रही हैं तो काम करते रहिए और जो है ना वो साथ में रेडियो सुनना मत छोड़िएगा, वो भी सुनते रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, हिट ऑफ द आवर का गीत तमाम दोस्तों के नाम।
1: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की प्यारी सी आवाजों में। ये प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश किया और ये गीत सोनिया बहन आप बर्मिंघम में सुन रही हैं और आपने इस गीत की फरमाइश की थी, तो आपकी पसंद का गीत आपके नाम किया था। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि टाइम चेक का टाइम हो गया है, तो चलते हैं दोस्तों टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:15 यानी कि 15 मिनट्स पास्ट जनाब 12। और जनाब अब कमर्शल के बाद जो गीत सुनेंगे वो नदीम मंसूर साहब ने फरमाइश की इस गीत की, उनकी पसंद पे उनके नाम करेंगे। और मोहम्मद बशारत भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और जनाब आप के नाम करते हैं गीत। और मुदस्सर कियानी साहब, आप भी फ़ोन कर रहे हैं जनाब, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं नदीम मंसूर साहब की फरमाइश पे कमर्शल के बाद ये गीत सुनते हैं।

0: हफ्सैन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 7230300
2: My favourite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone.

जी दोस्तों, अभी आपने उदय नारायण की आवाज में प्यारा सा गीत सुना और इस गीत की हमें फरमाइश की थी नदीम मंसूर साहब ने। बहुत शुक्रिया नदीम मंसूर साहब। अब जनाब वक्त जो है बहुत करीब है कमर्शियल के, तो चलते हैं जल्दी में ये गीत सुन लेते हैं और इस गीत को नज़र करना चाहूँगा। प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम, मूना जी आपके नाम, और इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा। जनाब इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली आपके नाम, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और इन्जॉय करते हैं तुलसी और सोनू निगम की आवाज़ों में।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही वक्त हो चुका है जनाब कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा जनाब आप सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं। कोशिश होगी कि जनाब कोई ऐसा गीत हो जो पंजाबी में हो और हम कोशिश करेंगे कि जनाब गुरदास मान का कोई गीत आप दोस्तों के नाम करें। तो चलते हैं दोस्तों कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद गुरदास मान को सुनेंगे, सभी दोस्तों के नाम करूँगा।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the

जी दोस्तों, अभी आपने गुरदास मान की सुरीली प्यारी मीठी आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। और इस वक्त बाबर शाह पे बशारत अली और आरिफ अली काम कर रहे हैं। सिकंदर अली जनाब मजे कर रहे हैं इस वक्त, आज छुट्टी पे हैं और ड्राइव कर रहे हैं और साथ में सन्ना रेडियो को सुन रहे हैं। और आपके नाम करते हैं ये गीत, इंजॉय कीजिएगा और सभी दोस्तों के नाम।

0: जी आरिफ अली, जरूर आपको ये गाना पसंद आया होगा। और अब जनाब चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:46, यानी कि 46 मिनट्स पास 12। इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद आप सदाबहार पुराना गीत सुनेंगे। हडर्सफील्ड से बाजिद भाई आपके नाम, मुदस्सर कियानी साहब, मोहम्मद बशारत भाई और सोनिया बहन बर्मिंघम सुन रही हैं उनके नाम, और रीटा बेटिया अमेरिका में सुन रही हैं उनके नाम, और नुतान बहना आपके नाम, और चौधरी मुजफ्फर साहब, और जनाब इसी गीत को सीमा जी, सिमरन जी आपके नाम भी करेंगे, हीरा खान साहब, तारी जुल्फी साहब, नसरीन साहब, अब्दुल क्यूम साहब, फ्राइजिंग ऑलो वाले, चौधरी मुजफ्फर साहब और दीकर तमाम दोस्तों के नाम, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम, और अमरीन साहब आपके नाम। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आ गए हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे प्यारे म्यारी गीत पेश किए जाएं। अगर आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं या किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमें स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। नंबर होगा 01274306666। ये आसान सा नंबर है, इसके रास्ते आइएगा, हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे अच्छा और प्यारा सा कोई गीत आपके नाम के साथ जोड़ा जाए। तो चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम करूंगा जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
1: Of the hour brought to you in association with National Property Lawyers, one trusted team for your property and legal needs. Call 01274 559 565.

0: जी दोस्तों, अभी आपने साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। और इसके साथ ही दोस्तों, अब वक्त हमें बता रहा है कि जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल पे जाने से पहले जनाब टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही है 1:13, यानी कि 13:01। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद एक और प्यारा सा गीत होगा, मेरी जानब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मन पसंद सनराइज रेडियो के संग।
2: नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
4: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

जी दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं जनाब अगले गीत की जानिब। ये भी प्यारा सा गीत है, मैं आप सभी सुनने वालों के नाम करूंगा, तो चलते हैं सुनते हैं दो प्यार भरी आवाजों में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही दोस्तों वक्त जो है वो हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलेंगे जनाब पहले कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा, वो गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा, स्पेशली प्यारी बहना सादिया जी आपके नाम, आजरा जी आपके नाम, और नजमा सबा, इफ़त, नादिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा, साइमा आपके नाम भी, और जनाब आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम करूँगा, साइमा जी आपके नाम भी करूँगा। तो चलेंगे दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

जी दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और आप चलते हैं एक और प्यारे गीत की तरफ। ये मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम

जी दोस्तों, अभी आप बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे। अब इसके साथ ही चलते हैं जनाब। वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का हो चुका है, तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं जोहर की अजान। उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।

0: जी दोस्तों अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है जनाब और अब चलेंगे पहले टाइम चेक कर लेंगे
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:45 यानी कि 45 मिनट्स पास्ट वन तो जनाब वक्त जो है वो कमर्शियल का हो चुका है और सदा बहार पुराना गीत जो है ये नज़र करना चाहेंगे जनाब वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपके नाम हीरा खान साहब आपके नाम और आपके साथ साथ मुदस्सर कियानी साहब मोहम्मद बशारत भाई और सोनिया बहन बर्मिंघम में चौधरी मुजफ्फर साहब और नदीम मंसूर साहब सिमरन और सीमा जी और तारिक जुल्फी साहब और इसी गीत को अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल से आपके नाम भी करेंगे और तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं इस वक्त बल्कि दो कर रहे हैं बशारत अली और आरिफ अली तो सिकंदर अली कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे उनके नाम भी करेंगे और दुकान पे जो दोस्त बैठे हुए हैं उन सब के नाम करेंगे तो दो प्यार भरी आवाज़ें हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में ये गाना आप सभी सुनने वालों के नाम करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इसे इंजॉय करेंगे तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत पहले छोटी सी कमर्शियल है उसके बाद प्यारा सा गीत है वो सुनेंगे और फिर आपसे मिलते हैं सुनते रहिएगा

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: 24 hours a day, 103.2. This is Sunrise Radio.
2: Got the greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
4: तू भी आ जा के आ गई रुत मस

जी दोस्तों, अभी आप लता जी और जनाब रफ़ी साहब की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे। यकीनन आप दोस्तों ने इस गीत को पसंद किया होगा। और जो हम गीत ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा। हम सोच रहे थे जाते जाते ये जो गीत है आप दोस्तों के लिए पेश करेंगे, लेकिन क्या है कि अब कुछ गीत ऐसे होते हैं उनको आसानी से मिल जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो अब सोच में पड़ा हुआ हूँ कि अगर वो गीत जो मैं सोच रहा था कि ये प्ले करूँगा तो वो नहीं मिल रहा, तो फिर कौन सा गीत प्ले करूँगा, ये आप ये टेंशन खाई जा रही है जनाब। तो दोस्तों, क्योंकि जो भी गीत होगा हमारे इस आवर का, हमारे प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा जनाब, और आखिरी गीत जो होता है वो फिर कोई अच्छा सा होना चाहिए, ताकि जब बंदा प्रोग्राम ख़त्म करके जाए तो थोड़ा सा बंदा मिस करे कि यार काश थोड़ी देर और ये बंदा रह जाता तो कोई और प्यार भरे गीत सुन लेते। लेकिन क्या है कि वो गाना, यार क्या बात है उस गाने की, वो गाना नहीं मिल रहा। चलिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है, फिर जब कल आएंगे, नहीं तो कल ढूंढ लेंगे उसे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने बस जब अब तय कर लिया कि गाना लगाएंगे तो फिर लगाएंगे। तो एनीवे, अब चलते हैं दोस्तों। मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। उम्मीद रखते हैं आज का प्रोग्राम आप साथियों ने पसंद किया होगा। साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह जनाब 11:25 पर होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अमर शराद को इजाज़त दीजिएगा। हमारी जानिब से खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: देखा उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे पैशनेटली पकड़ा हुआ है।
1: हाँ, हाँ, तुम्हें मालूम है शीतल, ये जो डिस्कोज में धुआं छोड़ते हैं ना, इसमें हाई डोज ऑफ पैराफिन होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ।
0: अपनी साइंस झाड़ना बंद करोगे यहाँ
1: शीतल?
0: शट अप।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो, द ग्रेटेस्ट।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: My favorite radio station, Sunrise Radio.
2: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
3: We love Sunrise Radio.
4: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: नफसेन जायकातुल मौत
0: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: my favourite radio station, Sunrise Radio.
1: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
2: We love Sunrise Radio.
3: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
4: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Ladies and gentlemen,
3: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
4: Number one.
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: कफ्सिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9। टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

लो जी एक 90 साल के बुढ़े का 80 साल की बुढ़ी ने तोपा भरया जाता रब जाने भरया किदा गया। वो नहाते चारे पेके गईया मुंडे तुर गए मेले वो निके न्याणे नाल चले गए मुके सब चंबे।

दिल जवान है सांझा, तू है माई हीर नी बुढ़िए मैं हां बापू रांझा, तू है माई हीर नी बुढ़िए मैं हां बापू रांझा।